0: टर्बुलेंस,
1: यही बातें होती है जिसकी वजह से लड़ाइयां होती हैं। अच्छा कौन है जिसके पेट में बात पचती नहीं है?
2: रणवीर।
3: बोलो मदर, आप मुझे कोई सीक्रेट बोल रहे हो? मुझे किसको तो बोलना पड़ेगा।
4: मेरे अभी दिल की बात बाहर निकलने वाली, मेरी बच्चे मेरी सुनते नहीं है यार।
5: एक्चुअली बहुत खुश होते हैं जब टीम में इतना गाली खाते हैं और जब ऑपोजिट में ऐसा विकेट लेने को मौका मिलता है।
4: मतलब मेरे बारे में बात कर रहे हैं।
0: जब ये शो अनाउंस हुआ ना भाजी कि इतनी कंट्रीज में आएगा, मेरे को भी पक्का यकीन हो गया कि ये शो मेरे अलावा कोई कर सकता है। तो
6: आपकी वाइफ बैठी ने रितिका उधर
5: जी,
6: आपके लिए मैं उधर बैठना चाहती हूँ उनके बगल।
0: ऐसा क्या कमी थी मेरे में?
7: ये दे रहे हैं आपको
0: दो आलिया भट्ट को।
1: अगर कोई चीज पूरी फैमिली के लिए फिट है तो हिंदुस्तान में हिट है। फॉर एग्जाम्पल हमारा शो
6: सीक्रेट हो, तोहफा कबूल करो।
4: सुपर हिट सर, सुपर हिट।
1: देखो भाई देखो, नेटफ्लिक्स पे देखना नहीं भूलना।

0: अपना प्यार कर लेना, खुद को खत्म मत कर लेना।
1: सैयारा मतलब तारों में एक तन्हा तारा, खुद जल के जो रोशन करते जगे सारा। और वो तुम मेरे सैयारा।

वेतकाय वेनु गस्तग बगीचा तकाय एगे मेवा आय ओट्टर तफात वेगिंवा हाल खदुरु रुकाय गोवा माय इव्वत्तर वेगिंवा हाल गय्याय इव्वत्तर वेगिंवा हालुगा जातु न्याय अन्नार उफिद्दि रसखलांगे ए गस्तकुं मेवा अत्विज्जनम ए मेवा इंत्य बैमी हुं काश अधि गोवां खंडा दुहकुं एग जका देश आदित्य बैमी हूँ इसराफ नुकराश एहनी हम अकाशवरुम इसराफ कुरामी हूँ देखे एकलांगे लोभ वे वुडगे निन्वे थे।

Nihomis algorithm is described in data security analytics and visualization. Algorithm owners in computer science course Nihomis kiyawadini. Algorithm is described in data security to visualize kurani ekimo ekiden ni data set ed deep ek sensitive ni hola kine theory pondakka deni ekimo ehen is described ni den ekenta analyze kuruma das kuruma ekahala kota mis described ni dos ni module vara friendly vara lobby teacher den mis vara boda uru alugana me mi module num pass kolla den vara boda das kwed den adi alugana me na mi tirit ko understand way to miss boda uru bala alugana me mis regandu damvaru message for the deadline ta karivaira message for that me sama vara avaha jawab de do easy ko me module ta suge doubt olum sidwa de ni miss vara deep ko miss vara calm ko olum sidwa de ga de ga miss vara low ko asu hori ha ke kiya de ni inge gota ka miss kiya de ni ki me ha boda ta technical ko ta kabis mo daane sudin me miss vara easy ko kiya de ए मॉड्यूल सकुगे लेसन सकिया वैदेर का हम लेक्चर आगो तक दानी दें सवालें होती या वरा फ्रेंडली गो तक मिस किया देनी थी वरा वरा पेशेंट मिस अस वरा कैप्टरी को मिस किया देनी है कि मु सिंह तर पहाड़ो एक ही अस मिस वरा इंगे गो तक किया देनी आलोगनु बुनाने कि मु वन ऑफ द बेस्ट लेक्चरर्स वी हैड आलोगनु में असाइनमेंट बेनुम वा ही तेरे का मिस वरा बड़ा दे miss vara patience aan algon men ek kahala swal tar kitam pahara tang here miss vara patience vara inge algon men inge gotaka miss kiya de ni computer science vima vara technical gotaka daani module ek miss kiya de gotum vara vara phase gotaka kiya de ni den algon men eha boda meet meenguniyas kiya de ru inge miss una I think busy vado ha miss una ne kulun tarika group terega miss dpa miss ekamo avah pv ma message kollana me doubt ta reply dene me miss vara patient vara lobe miss de asle

0: टू
1: ये क्या
0: टर्बुलेंस,
1: यही बातें होती है जिसकी वजह से लड़ाइयां होती हैं। अच्छा कौन है जिसके पेट में बात पचती नहीं है?
2: रणवीर।
3: बोलो ना, अगर आप मुझे कोई सीक्रेट बोल रहे हो तो मुझे किसको तो बोलना पड़ेगा।
4: मेरे अभी दिल की बात बाहर निकलने वाली, मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं है यार।
5: एक्चुअली बहुत खुश होते हैं जब भी टीम में इतना गाली खाते हैं और जब भी ऑपोजिट में ऐसा विकेट लेने को मौका मिलता है,
6: मतलब मेरे बारे में बात कर रहे
5: हैं।
0: जब ये शो अनाउंस हुआ ना भाजी कि इतनी कंट्रीज में आएगा, मेरे को भी पक्का यकीन हो गया कि ये शो मेरे अलावा कोई कर सकता है। तो वो
7: आपकी वाइफ बैठी ना रितिका उधर
8: जी,
7: आपके लिए मैं उधर बैठना चाहती हूँ उनके बगल।
9: ऐसा क्या कमी थी मेरे में?
10: ये दे रहे हैं आपको
9: दो आलिया भट्ट को।
1: अगर कोई चीज पूरी फैमिली के लिए फिट है तो हिंदुस्तान में हिट है। फॉर एग्जाम्पल हमारा शो
7: सीक्रेट हो, तोहफा कबूल करो।
1: सुपर हिट सर, सुपर हिट। देखो भाई देखो, नेटफ्लिक्स पे देखना नहीं भूलना।

0: अपना प्यार कर लेना, खुद को खत्म मत कर लेना।
1: सैयारा मतलब तारों में एक तन्हा तारा, खुद जलके जो रोशन करते जगे सारा। और वो तुम मेरे सैयारा।

0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुल कोरी इकार गड़ फणा रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूं आदि बुद्ध दो गेरे मेंदम बार गड़ तेरी हूं
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे राज्य क्याडू
3: अंगादी उंगन्नादी मुनिफोई फिलवा दिनुमगा
4: थेदु वेरिकम मायको
3: एकु वेरिकम मायको
4: एरुवेस मिहारुवेस रायतुन्नायको रायतुन्ना एम मेगातुगा दिवेहराज्य के अडु
3: एंहा सतरस्ते कसालिस नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव अड्डी हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड